0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজী বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: आज सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की

0: एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
7: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
8: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे.
6: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
9: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
6: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
10: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryo said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
6: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
11: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts, and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
6: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts, and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jayashankar said, "The impact of the conflicts extend far beyond the regions where they occur." He said there is broad agreement that the international community must continue efforts to mitigate the consequences of conflicts and create conditions conducive to diplomacy. On energy security, Dr. Jayashankar reiterated that India's energy choices are guided by national interest and that purchases are made on considerations of affordability and availability.
12: Today, our largest oil supplier, little less than 40%, is Russia. Our largest gas supply is the United States. And that was not the case till the 28th of February of this year. The main supplier was Qatar. So what is happening is the world is also de-risking on the region. People are looking for alternative energy sources and saying, okay, I'm prepared to buy at longer distance, maybe at a higher cost, but there is a greater security about it, predictability about it. So what I see in a way is that the global energy scenario will fundamentally change after this.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
2: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and disaster response team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janit Ruwan Kojitwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
13: We are very thankful to India because since the day this Ditwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
2: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centric diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and 2 UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashvani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
3: India jo kiya hamare liye vaccine
14: at that time, India made

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से

निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज के इस प्रसारण में मैं मेनका देव आप सब सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गीत संगीत के इस कार्यक्रम का आगाज करने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम आज का गीत प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन का समय होगा 12:38 पर।

समाचार प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। कार्यक्रम सबरंग का समय होगा 1:10 पर। कार्यक्रम तरुण्णुम का वक्त होगा 1:40 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 2:00 और आज का अंतिम कार्यक्रम गीतिका लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा।

फौजी भाइयों, आइए अब आरंभ करते हैं आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत फिल्म गुलाम से। आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक के। इस गीत के गीतकार है समीर और संगीतकार है जतिन ललित।

प्रस्तुत है अगला गीत अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म हम से। इस गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और सुरु से सजा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पेश है अंतिम गीत फिल्म हमको इश्क ने मारा से, आवाजें मनोहर शेट्टी और अपर्णा शुक्ला के। इस गीत के गीतकार है समीर और संगीतकार है आदेश श्रीवास्तव।

ये आकाशवाणी का गुवाहाटी केंद्र प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। फौजी भाइयों, अब पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आज फिल्म एक दूजे के लिए का गीत सुनवाने जा रहे हैं। आवाज है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के। इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम है बंदगी के गीत और भजन। पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमेशा की तरह कार्यक्रम का आगाज होगा 12:10 पर। पेश किया जाएगा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत 12:10 पर। 12:12 पर कार्यक्रम आज का गीत प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और कार्यक्रम गीत मनोरंजन का समय होगा 12:38 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। कार्यक्रम गुंजन का समय होगा 1:10 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक समित का समय होगा 1:40 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 2:00 और कल का अंतिम कार्यक्रम नजराना लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म बीवी हो तो एसी से।

भक्तिमूलक गीतों पर आधारित कार्यक्रम बंदेगी के गीत और भजन में पेश है अगला गीत फिल्म लगान से। आवाज है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों के।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म तुम्हारे लिए से।

आशा की शख्सियत और उनकी कला मेरी नज़र में क्या है, सुनिए। दोस्तों, आशा के नगमों की निराली शान है, साफ पानी की तरह बहती हुई हर तान है, दिल रुबा आवाज में हर सांस की झनकार है, इसका हर एक गीत खुद संगीत का शाहकार है। इस तरह गाती रही है दादरा ठुमरी गजल, चांदनी में जिस तरह लहरों पे बहते हों कमल, नौजवानों के दिलों में राग भर देती है ये, कितने जज्बों की नशीली आग भर देती है ये, ऐसा लहजा जिसमें खुलकर बोलती हो जिंदगी, जैसे उड़ने के लिए पर तोलती हो जिंदगी, महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं मिले जुले गीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म घर से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है गजलों पर आधारित कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम में पेश है पहला गजल अब सहर एल्बम से गुलाम अली की आवाज में।

0: to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगे और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का सातवां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजी 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और

0: जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन

0: खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रही तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सब सैनिक भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाई, अब पेश है आज का अंतिम कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत आंधी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं पुराने गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत हम झोली फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

इस गीत के साथ ही गीती का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का प्रसारण। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दिन के 12:10 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वीकार करिए। शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी हां, हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और अक्सर हमारे कार्यक्रमों में हम बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश ये होती है कि जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य के हर पहलू की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। और जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह से उनको पहचानें, सिम्टम्स को ढूंढें और फिर इलाज कराएं। पर क्या आप ये जानते हैं कि शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी या मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है? जी हां, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में हम इस पर अक्सर कम ध्यान देते हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, उन्हें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के संयोजन के कारण विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और बुजुर्गों में जो ये मानसिक समस्या या मानसिक स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वो सारी जानकारी हम चाहते हैं कि आज आपको रेडियो डॉक्टर के माध्यम से मिले। हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ, हमारी स्पेशलिस्ट आ चुके हैं स्टूडियो में। आपका उनसे तारुफ करा दें। डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता हमारे साथ हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली में। स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में एफएम के इस कार्यक्रम में। तो रेडियो डॉक्टर में जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर बात हर पहलू की करना चाहते हैं और स्वास्थ्य के जब हम हर पहलू की जब बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम शारीरिक पर ही रुक जाते हैं कि ये बीमारी है वो बीमारी है और ये भूल जाते हैं कि हो सकता है ये बीमारी की उपज जो है वो मानसिक लेवल पे हुई हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये बताएं।
2: आपने बहुत अच्छी चीज बोली एक शालिनी जी, कि कई बार शारीरिक बीमारियां जो हैं वो मानसिक प्रॉब्लम्स की उपज से भी हो सकती हैं। हमारे देश में बहुत एक मान्यता है कि अरे बूढ़े लोगों में फिजिकल प्रॉब्लम्स या शारीरिक परेशानियां होंगी, बट मानसिक स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता है। बीमारी होती भी है तो लगता है अरे ठीक है, हो जाएगी ठीक, छोटी मोटी चीज है, बूढ़े हैं, इनको तो ये दिक्कतें होंगी। बट बहुत सारे ऐसे अभी अध्ययन हुए हैं जिनमें ये देखा गया है कि मानसिक बीमारियां बूढ़ों में उतनी ही कॉमन या कुछ बीमारियां जनरल पॉपुलेशन से भी ज्यादा बूढ़े लोगों में देखी गई हैं।
3: अच्छा।
2: तो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो मानसिक बीमारियों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी उनके स्वास्थ्य।
1: सही बात आपने बोली और ये भी बात बिल्कुल सही है कि कई बार जब हम मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या वर्किंग जो लोग हैं या नई नई शादी हुई है और 20s, 30s में है, 40s तक में है, इनको ज्यादा होगी बिकॉज उनके पास इतने सारे काम है, उनके पास समय नहीं है सोचने का, भागदौड़ बहुत है जिंदगी में, उसके कारण स्ट्रेस है और स्ट्रेस के कारण उनका मेंटल हेल्थ खराब है, ये भी कहीं जुड़ता है। पर जैसे आपने कहा कि एल्डरलीज को भी होता है तो हम जरूर इसके कारण भी जानना चाहेंगे और किस तरह से हम इससे डील करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कैसे इससे डील करें, ये भी हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में हम बात करें। पर इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता जुड़ते हैं डॉक्टर स्वाति, और वो अपनी अपनी समस्याओं के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इस विश्वास के साथ जुड़ते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको बहुत सारी उनकी समस्याओं का घर बैठे समाधान मिल जाएगा। तो आज भी हम इस कार्यक्रम में यही

आएंगे कि आपकी अगर कोई समस्या है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, ऐसी कोई समस्या आपको लगती है कि उनको मानसिक स्तर पर आप फील कर रहे हैं, और नहीं तो जानकारी के लिए भी आप, हर किसी को तो उस स्टेज पे पहुंचना ही है, तो कोई जानकारी चाहते हैं आप इस विषय पर जो कि है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली यानी बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। जीवन चलने का नाम है और ये चलती ही रहेगी और इसे चलना भी है, पर हमें खुश रहकर अपने जीवन को बिताना है, रुकना नहीं है भाई, कहीं चलते जाना है।

0: जी हाँ, रुकना नहीं है, हार के और जीवन चलने का ही नाम है, चलते जाना है। पर कितनी अच्छे से आप अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल एज वेल एज सोशल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हों जिससे कि हम जिंदगी को भरपूर जी पाए। हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली पर, बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर। तो पहले इनसे बात करते हैं। जगदीप सिंह जी हमारे साथ हैं कॉल पर। हेलो, नमस्ते जगदीप जी, स्वागत है आपका।
1: देखो 80 साल उम्र है मेरी सर।
0: जी जी।
1: मेरे घुटनों में दर्द 5-6 साल से हो रहा है। इलाज तो कर रहे हैं भाई, वही इलाज होता है, गोली दर्द की देते हैं और ट्यूब देते हैं। 5 साल से यही इलाज हो रहा है। अब 6 महीने से मेरा हाथ कांपने लग गया। वो डॉक्टर कहता है कि ये घुटनों की वजह से हाथ कांप रहा है। ऐसा जानना चाहते हैं कि घुटनों का दर्द इससे साथ है या नहीं है, ये पता करना चाहते हैं।
0: ये घुटनों के दर्द से रिलेटेड है कि नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं?
1: ये
0: जी जी जी, ठीक है। मैम से पूछते हैं, मैम आपका प्रश्न सुन रही हैं।
2: जगदीप जी, ये बिल्कुल मेरा एरिया नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: दिल्ली के
2: हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारा एम्स में नेशनल सेंटर फॉर एजिंग जो एक सर्विसेज शुरू हुई है जो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, वहाँ पर हमारे हड्डी के डॉक्टर भी आते हैं। आप वहाँ पर एक बार आ सकते हैं, उनका दिन होता है सोमवार, उसमें आके आप उन्हें एक बार दिखा लीजिए, वो ज्यादा अच्छे से इस बात का जवाब दे पाएंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी बात करने के लिए, अपनी समस्या शेयर करने के लिए। और जैसा हमने कहा, हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा डॉक्टर स्वाति, कि हम फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर ही ज्यादा कंसंट्रेट भी करते हैं और दिमाग भी वहीं ज्यादा चलता है। यहाँ दर्द है या ये बुखार है या बढ़ती उम्र की जो समस्याएं होती हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो बीपी हो चाहे जो भी बीमारी हो, लेकिन मेंटल जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। और यही हम चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि इनको वो नहीं करना है, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ जो इश्यूज की हम बात कर रहे हैं वो उसके क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं?
2: सबसे कॉमन जो देखा गया है इस उम्र में वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे हम सब जानते हैं कि जिसमें उदासीपन रहना, लेकिन बूढ़े लोगों में कई बार देखा गया है कि उनमें चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे, वो बहुत नकारात्मक बातें करेंगे, पहले जो चीजें अच्छी लगती थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, ज्यादा सोने लगेंगे। कुछ लोग होते हैं जो जिनको नींद में दिक्कत भी होती है, भूख खत्म हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जीने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद दूसरा जो चीज देखी गई है जिसको कहते हैं मतिभ्रम या डिमेंशिया। डिमेंशिया जिसमें याददाश्त बहुत ज्यादा खराब होने लगी है, आपको चीजें याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीजें, कब खाना खाया, आज क्या किया, पिछले 24 घंटे में क्या किया, सवालों को बार बार दोहराते हैं आप, छोटे मोटे डिसीजंस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। डिमेंशिया। फिर हो गया आपका एंग्जाइटी, हम बहुत कॉमनली देखते हैं आगे क्या होगा, क्या मेरा कोई ख्याल रखने वाला होगा, मुझे कुछ हो गया तो।
0: और हम अक्सर ये भी कहते हैं कि इनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए तो इसलिए ये ओवरथिंकिंग करते हैं, तो क्या ये उसी से होता है कि आप कुछ नहीं करते हो? तो ये भी मैं जरूर बात करूंगी कि अपने आप को बिजी रखना कितना जरूरी है। पर हमारे एक श्रोता है वो हमारे साथ जुड़ी है, मिसेस बेदी, तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है मिसेस बेदी आपका रेडियो डॉक्टर में।
3: जी जी, डॉक्टर साहब दोनों को बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताएं आप क्या प्रश्न करना चाहेंगी?
3: ऐसा है डॉक्टर, मैं हूँ 74 की, पर मेरी लाइफस्टाइल है 16 साल वाला। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस एज में ये मत सोचिए कि मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं दिल हो जवान तो आप जिंदा रहे।
0: तो आज तो हम यही कार्यक्रम कर रहे हैं बेदी जी। हाँ। शॉर्ट में अपना लाइफ स्टाइल बता दीजिए सभी श्रोताओं को, 16 साल के बन जाए हम सब।
3: अपने आप को, क्योंकि मैं रेडियो से बहुत जुड़ी हुई हूँ, एक वर्ल्ड फेमस आरजे वो मेरी बेटी है, तो उसने मुझे बहुत जिंदा किया। मैं बड़ी नेगेटिव थी क्योंकि सारे छोड़ गए, पेरेंट्स छोड़ गए, चले गए, खत्म हो गए, हस्बैंड चले गए, तो मेरा थोड़ा सा कुछ पार्टनरशिप के झगड़े थे, उससे मैं बड़ी परेशान थी। तो मुझे कहते हैं ना कोई आपको ऐसा साथी मिल जाए जो जिंदगी दे, तो उसने मुझे पॉजिटिविटी दी। और अब मैं क्या करती हूँ, 25 साल है मैं योग में हूँ। मैं इतनी बीमार थी कि 2 कदम नहीं चल सकती थी, अब 19 साल से उसी सेंटर की मैं हेड हूँ।
0: चलिए, तो योग ने बहुत आपकी मदद की, लेकिन कुछ
3: जिंदा ही उन्होंने।
0: हाँ, तो कोई प्रश्न है आपका? हाँ, कि
3: नहीं, मैं खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ ना, तो मैं समझती हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सब बुजुर्गों को।
0: जी बताइए।
3: एक तो अपने आप को बुजुर्ग मत समझिए, दूसरा बच्चों के साथ मिलके रहिए, उनको ज्यादा टोका टक्की मत करिए, उनको जो बात समझानी है थोड़े प्यार से समझाइए, नहीं तो

0: बच्चे भी चिढ़ जाते हैं और उनके आगे जो बच्चे हैं वो और भी चिढ़ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनके साथ, ठीक है। और मैं देखिए योग करती हूँ, कुछ मैं बिजनेस करती हूँ कि जो मेरे हाथ कभी टेढ़े थे बिल्कुल, अब मैं उनसे केक सेल करती हूँ, पिकल चटनी जैसे सेल करती हूँ, बिजी बहुत।
1: जी जी, तो आज जो कार्यक्रम में बेदी जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी मिसेस बेदी आपको, जो कार्यक्रम में हमें डॉक्टर साहब से बात करनी है वो सारी बातें आप अपनी तरफ से एयर पर बोल रही है। जी जी, आपका मैसेज
0: बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सबको दिल से समझना चाहिए जो ये कह रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये कोशिश है।
0: अगली बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप उनकी बातों को ऐसे अंदर जैसे कहते रोटी खा ली और पेट में चले जाएं वो बातें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, और ये आपने बहुत अच्छा, थैंकफुल हूँ मैं आपकी कि आपने ये टॉपिक चुना।
1: और हम आपके थैंकफुल हैं मिसेस बेदी, आप जैसे श्रोता हैं तो हमें बहुत सारी नई नई चीजें भी पता लगती हैं और हमें ये भी पता लगता है कि हमारा कार्यक्रम सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है।
0: आपका बताओ, मेरी क्लास का टाइम है पर आज मैं 5 मिनट का लेट हूँ, आपसे बात जाना
1: था। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत कॉल करने के लिए,
2: थैंक यू।
1: और एक और श्रोता वेट कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्या है। हेलो राजेंद्र जी।
3: जी शालिनी मैम और डॉक्टर साहिबा दोनों को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
3: अब सवाल मेरा ये है कि आप बुजुर्ग कहते किसको हैं, पहले मैं जानना चाहूंगा, 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर, 73, 80, 90 साल से ऊपर, किसे आप बुजुर्ग मानेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है, कहते हैं कि चिंता ही चिता तैयार कर देती है, तो मानसिक रोग हो ही ना, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज या क्या एटमोसफेयर सरकम साथ क्या
1: जी, जी, बिल्कुल इसकी बात हम पूरे कार्यक्रम में करते रहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए।
3: तीसरा सवाल मेरा ये है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन और टेंशन में क्या फर्क है, प्लीज जरा इसको डिटेल विस्तार से समझाएं बड़े में। और मुझे चौथा सवाल है, मेरे को स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है मैं, तो प्लीज इससे मैं कैसे दूर रहूं, प्लीज इसका उपाय बताएं।
1: जी जी
3: मेहरबानी,
1: बहुत सारी बातें आप जानना चाहते हैं राजेंद्र जी, तो इसको हम धीरे धीरे करके कार्यक्रम के दौरान लेते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को, और डॉक्टर स्वाति आज हमें इस कार्यक्रम में यही बताने वाली हैं। तो सबसे जो आप इनकी पहला जो प्रश्न था, बुजुर्ग किसे कहते हैं, पहले तो इसे ही समझ लेते हैं।
2: तो राजेंद्र जी नमस्ते, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो डेफिनेशन है, तो बुजुर्ग वो है जो 60 से ऊपर है, जहां पे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। बट मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते हैं तो बुजुर्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस 60 के हो गए तो अब तो हम बुजुर्ग हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे पहले हमारी जो श्रोता जुड़ी उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बुजुर्ग मानती नहीं हूं, मैं 16 साल जैसा महसूस करती हूं। सो मजाक में बोले तो एज इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है, आप उसे कैसे लेते हैं। प्रिवेंशन की यहाँ पे आपने बात करी कि हम कैसे उस चीज को रोकें, कैसे हम इंश्योर करें कि मानसिक बीमारियां ना हो, उसके कुछ कुछ चीजें हम कहते हैं। सबसे जरूरी है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे आप चाहे योगा करिए, वॉक पे जाइए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बट फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखना। आजकल जैसे अब छोटे बच्चों को भी अगर हम देखें, यंगस्टर्स को, सबकी डाइट बहुत खराब हो गई है, तो न्यूट्रिशियस खाना खाना, फ्रूट्स वगैरह का इनटेक, पानी का इनटेक अपना ठीक रहना, किसी भी नशे वाली चीज से दूर रहना, जैसे निकोटीन हो गया, सिगरेट्स हो गई, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, उनका सेवन या तो बिल्कुल नहीं करना या कम से कम करना। उसके अलावा जैसे मेडिटेशन के बहुत अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं कि मेडिटेशन या प्राणायाम वगैरह करने से फर्क पड़ता है। सपोर्ट सिस्टम्स, आपकी रिलेशनशिप्स, हम लोग सब काम में डूबे रहते हैं कि काम करना है, पैसे कमाने हैं, ये करना है, बट बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने देखा है कि रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल वेलबींग के लिए। और वो भी ये नहीं कि 15 रिलेशनशिप, अगर 5 रिलेशनशिप भी है लेकिन वो बहुत अच्छी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना, कोई नई चीज सीख ली, पजल्स वगैरह करते रहे, गेम्स खेले, अपने लोगों से बात करी, अपने काम को, रूटीन को फॉलो करते रहे, तो ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है।
1: और एक और जो प्रश्न उन्होंने पूछा, वो जो हम उससे पहले बात कर ही रहे थे, जो आपने अलग अलग जो टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज पे हम बात कर रहे थे, डिप्रेशन की बात आपने कर दी थी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, इन सबका डिफरेंस जो है वो हमारे और भी बहुत सारे श्रोता जानना चाहेंगे।
2: राइट, सो टेंशन और स्ट्रेस स्ट्रेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, टेंशन है कि बस किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना कि अरे कल एग्जाम है कैसे होगा, या कल मुझे कहीं जाना है तो कैसे जाऊंगी। स्ट्रेस है अगेन वेरी

0: सिमिलर जहां पे हम किसी चीज को लेके परेशान हो रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें दिक्कत हो रही है उसको प्लान करने में या मैनेज करने में. तो ये दोनों चीजें तो आपके जनरल डे टू डे लाइफ में सबके ही चलते हैं. जब हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम एक मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं. एंग्जाइटी जिसमें एक ऐसा समय जहां पे लंबे समय तक बिना किसी बहुत ज्यादा वजह के आपको परेशानी चल रही है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या हर समय बहुत ही ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि सर चकरा रहा है या ठीक नहीं लग
1: फीलिंग
0: रहा है,
1: होना कि
0: अच्छा नहीं अच्छा लग रहा नहीं है लग अंदर रहा है. से जी. और डिप्रेशन जैसे मैंने बताया जहां पे आपका मन उदास या चिड़चिड़ा हो जाएगा, वहां पे उसके साथ साथ भी एंग्जाइटी हो सकती है. एंग्जाइटी और डिप्रेशन यूजुअली एल्डरली में हमने देखे हैं कि साथ साथ चलते अच्छा. हैं. बट डिप्रेशन का सबसे कॉमन फीचर रहेगा कि आपका मन परेशान रहेगा, चाहे वो चिड़चिड़ा रहे या वो दुखी रहे. एंग्जाइटी में फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा आएंगे, पेट जल्दी खराब हो गया है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है, हाथ पैर में कंपन हो रहा है.
1: तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये अलग अलग कारणों से हो सकते हैं या सेम कारण से ही ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है?
0: सेम कारण से भी हो सकते हैं. किसको, जैसे मान लीजिए कोई लॉस हुआ आपके किसी के यहाँ, आपके किसी की डेथ हो गई, तो अब उसकी वजह से किसी को एंग्जाइटी भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा. और वहीं डिप्रेशन भी हो सकता है कि अब मैं उस इंसान के बिना कैसे जीऊं. कभी कभी कुछ चीजों में जैसे एल्डरली में हम लोग देखते हैं हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी ज्यादा रहती है. ऐसा नहीं है कि उनको डिप्रेशन है, बट उनको बस ये एंग्जाइटी है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊं, या मेरा काम ठीक से चलता रहे वाला. डिप्रेशन ज्यादातर उन लोगों में देखा गया है जहां लोनलीनेस बहुत ज्यादा होगी, या पहले डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, या आपको अभी रिसेंटली कोई लॉस हुआ है, उन सब में डिप्रेशन ज्यादा देखा गया है.
1: तो मतलब जैसे कुछ अननोन का फियर जो होता है उसको एंग्जाइटी समझे, है ना. और अगर आपको एक्चुअल कोई ऐसी फीलिंग हो रही है वेरी लो, वेरी डल, देन इट इज समथिंग डिप्रेशन के जैसा. तो चलिए यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक गाना सुनेंगे, लौट कर आते हैं. और गाने भी बहुत अच्छे होते हैं अपने मूड को ठीक रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए. गाना सुनना भी कहते हैं ना स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, तो हम भी इस कार्यक्रम में बीच बीच में आपको स्ट्रेस फ्री करते रहते हैं. स्ट्रेस नहीं लेना है, पर हाँ कार्यक्रम को में जो भी हम लेकर आ रहे हैं उसको समझना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल.
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए.
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर.
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर.

0: वेलकम बैक। आप हैं रेडियो डॉक्टर में। आज बात हो रही है बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ बात की, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े, पर एक मैसेज लेना चाहूंगी। यहाँ पर परिधि लिख रही है दिल्ली से, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स फॉर अस शालिनी मैम। क्वेश्चन ये है, कैन पुअर मेंटल हेल्थ ऑल्सो लीड टू बॉडी पेन्स? जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि फिजिकल मेंटल जुड़ा हुआ है, आपने कहा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी की तरफ है ये, कि अगर पुअर मेंटल हेल्थ है तो क्या बॉडी पेन्स में मैनिफेस्ट हो सकता है? और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि आई हैव नोटिस दैट ऑन डेज आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, माय लेग्स स्टार्ट्स पेनिंग व्हेन आई गो टू स्लीप। तो क्या ये रिलेशन आपस में है?
1: हाँ परिधि जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से कभी कभी हमें बॉडी पेन्स वगैरह हो सकते हैं, चाहे वो लेग्स में हो, चेस्ट में हो, बैक में हो। उसका इलाज बेटर रहेगा कि आप एक बार किसी स्पेशलिस्ट से मिलने, चाहे साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से, जो बाकी चीजों को भी असेस कर सके कि कोई अंडरलाइंग एक तो फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा अगर स्ट्रेस है तो क्या उसमें सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है या दवाई की भी जरूरत है अगर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो। सो बेस्ट रहेगा कि मिल लीजिए, क्योंकि दोनों रिलेटेड हो सकते हैं
0: जी। और हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं, यामिन भाई से बात कर लेते हैं।
2: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार यामिन भाई।
2: मैम को भी नमस्कार
0: जी। नमस्ते।
2: मैं जानना चाह रहा था जैसे कि बुजुर्गों को हम खाना वगैरह टाइम पे देते हैं, सबको दवाई वगैरह टाइम पे देते हैं, लेकिन जब भी वो चिल्लाते हैं, कहते हैं और उसी शेयर करते हैं, तो ये क्या बीमारी हो जाती है, कहाँ दिखाएं इनको?
0: मुझे जहाँ तक समझ में आता है यामिन भाई, ये कहना चाहते हैं कि हम उनकी केयर तो कर रहे हैं पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है या हाइपर हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है?
1: हाँ जी, वो हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड ना हो, हाइपर हो जाएं। उस समय खुद को बुरा लगता है, मान लीजिए आप उनकी केयर कर रहे हैं और वो सामने किसी को कह रहे हैं कि मेरे तो कोई देखभाल ही नहीं करता या मेरे साथ तो ये टाइम नहीं स्पेंड करता, तो वो चीज खुद को बहुत हर्ट कर सकती है। बट अगर हम उस समय अपने आप को हटाकर उन्हें देख पाए कि चलो वो परेशान है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें जानबूझ के हर्ट करना चाहते हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रख के उनके साथ डील करें, या तो उस सिचुएशन से हट जाएं या उन्हें प्यार से थोड़ा समझा लें। और आपको अगर बहुत उस चीज का स्ट्रेस हो रहा है तो आप जाके अपने किसी फ्रेंड से या अपनी किसी और फैमिली मेंबर से उस बारे में बात कर लें, बट उस समय अगर आप उनके ऊपर वापस चिल्लाएंगे तो सिचुएशंस खराब ही होंगी।
0: जी जी। और ऐसा ही एक और मैसेज आया, पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? जितेंद्र जी। हाँ, जी बताएं।
3: जितेंद्र जयपुर से।
0: हाँ जी जितेंद्र जी, अपना प्रश्न करें।
3: जैसे हमारा तब मेरी उम्र 52-53 साल है, लेकिन जैसे नींद की हमारी कमी है और मन सेंट्रल टाइप का रहता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, रेनबो भी सुन ले, एफएम गोल्ड भी सुन ले,
0: ऐसे करके कई तरह का,
3: हाँ कितना दे, सभी पे अच्छा आता रहता है, सबके अच्छा आता रहता है।
0: हाँ तो आपको अच्छा लगता है ना सुन के?
3: हाँ हाँ, तो मतलब इसमें पजल भी रहता माइंड, मतलब ये भी होता कि क्या क्या करें,
0: क्या क्या क्या देखें, क्या क्या छोड़ें,
3: क्या क्या, सारे अच्छा है ना,
0: सारे अच्छा है। चलिए,
3: प्रसार भारती का सारा ही चीज अच्छा है।
0: अरे वाह क्या बात है, ये तो हमारी एक तरह से तारीफ कर दी आपने।
3: हाँ लेकिन हाँ, तो इसका नींद की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हालांकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ कुछ, मतलब ऑफिसली कुछ ऐसे भी थोड़ा सा हल्का सा मन प्रॉब्लम रहता है जैसे, तो कैसे ठीक रखूँ अपने आप को? जैसे ये
0: जी
3: मेरे, मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं पहले कलकत्ता रहता था, तो दोस्त लोग थे,
0: तो यहाँ दोस्त लोग नहीं
3: है। हाँ नहीं
0: मैडम, आपसे कुछ पूछना चाहेंगी तो आप लाइन पे रहिए।
3: हाँ
1: जी। सो नींद में क्या दिक्कत आती है जितेंद्र जी?
3: मतलब जैसे 3-4 घंटे के बाद फिर नींद खुल जाती है।
1: अच्छा।
3: फिर 1-2 घंटा काम करते फिर सोते हैं।
1: अच्छा।
3: और दोपहर में भी सोने की इच्छा करती है, लेकिन ऑफिस में रहते हैं तो इसलिए ठीक से नहीं, मतलब नींद का ज्यादातर प्रॉब्लम है।
1: तो 3-4 घंटे बाद जब नींद खुल जाती है तो उसके बाद कितनी देर बाद नींद आती है?
3: करीब 1.5-2 घंटे बाद।
1: और उस 1.5-2 घंटे में आप क्या करते हैं?
3: कुछ घर का काम कर लेते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
1: अच्छा ठीक है।
3: अच्छा, और दूसरा चीज है कि जैसे कहीं घूमने की प्लानिंग हो रहा है तो चित्तौड़गढ़ जाएं कि मथुरा जाएं, सब पास पास, तो इसी कंफ्यूजन में कहीं नहीं जा पाते।
1: राइट right. तो ये तो हम कहते रहे, जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। बट एक देखिए, दो चीजें जो आप जहाँ पे आप कह रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें चंचल, ये चीजें हो सकती हैं। उसमें बेस्ट ये है कि एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि लिस्ट बना लेती हूँ क्या क्या करना है, उसमें से सबसे जरूरी क्या है या सबसे अच्छा क्या है या सबसे इम्पोर्टेंट क्या है या कौन सी चीज ज्यादा इजीली हो सकती है। जैसे आपने कहा 2 जगहों के नाम लिए आपने कहा, तो

0: रेगुलरली कम से कम फोन पे बात कर सकते हैं. सो वो चीज
1: और एक यहाँ पे नहीं है लेकिन दूसरे जगह है.
0: अच्छा, नहीं जैसे फोन पे बात कर लिया थोड़ा.
1: हाँ, कर सकते हैं.
0: थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सुबह करते हैं?
1: नहीं, शाम को करते हैं, 6:30 बजे शाम.
0: उसको कोशिश करिए सुबह कर लीजिए या शाम को थोड़ा और जल्दी कर लीजिए. और रात को जब नींद खुलती है तो घर के काम मत करिए उस समय. अपना जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया लेकिन बेड पे बैठ के मत पढ़िए उसको, कहीं कुर्सी पे या नीचे जमीन पे कहीं भी बैठ के पढ़िए. और फिर नींद आने लगे तो वापस सोने चले जाइए. या फिर जैसे योग निद्रा होती है या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वगैरह तो आजकल बहुत मिल जाती हैं, वो सब सुन लीजिए और लाइट वगैरह बंद रखिए. बहुत ज्यादा घर के काम करने लगेंगे तो दिमाग फिर से एक्टिव हो जाएगा. सो दिमाग को रिलैक्स रखना है. फोन का ये नहीं कि फोन को देखते रहे या टीवी को देखते रहे, लेकिन कुछ रिलैक्सिंग सुन लिया या सिर्फ पढ़ लिया बैठ के.
2: धन्यवाद प्रश्न करने के लिए. हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में. बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास आ चुके हैं. धन्यवाद जितेंद्र जी. ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है नरदेव सिंह चौहान ने कोटद्वार उत्तराखंड से. शाली मैम एंड डॉक्टर स्वाति मैम को नमस्कार. मैम, डॉक्टर साहिबा से एक मानसिक रोगी के केयर टेकर जैसे उनके पुत्र या पति या बहू को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? ये चाहते हैं कि आप उनको एडवाइस दें क्योंकि इन्होंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हमारे बुजुर्ग चाहते हैं वो को नहीं मिल पाता है अपने बहू से, चाहे बेटे से, चाहे पति से, वट एवर दे एक्सपेक्ट. तो उससे स्थितियां और बद से बदतर होती जाती हैं. तो आपका केयर टेकर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा?
0: बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कई बार हम मरीजों को देखते देखते उन लोगों को भूल जाते हैं जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं. सो उसमें हम लोग कहते हैं कि एक तो परफेक्ट कभी भी आप नहीं हो पाएंगे. कभी भी ये नहीं हो पाएगा कि सामने वाला पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो. वो अपने आप में परेशान है तो उसको किसी न किसी चीज में परेशानी दिख जाएगी. सो जैसे मैंने कहा, हर चीज को अपने ऊपर नहीं लेना है कि ये मेरी कंप्लेन कर रहे हैं या मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, वो नहीं करना है. अपनी सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे हम बोलते हैं कि आप थोड़ी देर आप एक्सरसाइज जरूर करिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा समय निकालिए. और उसके लिए जरूरी है कि सारी फैमिली कोऑपरेट करे. अगर सब लोग साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा समय बेटे को भी मिल गया जहां पे वो अपना काम कर रहा है या अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ कर रहा है. फिर थोड़ा सा फादर का ध्यान रख लिया, वैसे ही बहू ने करा, वैसे ही वाइफ ने किया, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड ने किया. तो एक सपोर्ट सिस्टम आपका रहेगा तो सबकी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी और सबको थोड़ा थोड़ा टाइम आउट भी मिल जाएगा. उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो रही हैं, हम लोग आपस में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर के आसपास या एरिया में किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं जो एज अ फैमिली आपसे बात करके चीजों को समझ सके, आपको समझा सके कि आपको चीजों को कैसे मैनेज करना है.
2: जी जी. और लगभग ऐसा ही एक और मैसेज हमारे पास आया है. डॉक्टर, हाउ टू गेट डीप कंटिन्यूअस एंड रेस्टफुल स्लीप, जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले राजेंद्र जी के साथ, तो आपने थोड़ा सा तो बताया. इनको कुछ और कहना चाहेंगे आप?
0: सो स्लीप के लिए ना हमारा एक मेथड होता है जिसको कहते हैं स्लीप हाइजीन. सो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं वो बता देती हूँ शायद अगर उससे मदद मिले तो.
2: बिल्कुल.
0: पहला रूल होता है कि सोने का जाने का समय और बेड छोड़ने का समय एक होना चाहिए. कि अगर आप 10:30 बजे सोने जा रहे हैं तो 10 से 11 के बीच में सोने चले जाइए. सुबह अगर 7 बजे उठ रहे हैं तो चाहे नींद आई है या नहीं आई है, 7 बजे बिस्तर को छोड़ दीजिए. दूसरी चीज, अगर आधे घंटे तक नींद नहीं आती है तो बिस्तर पर लेटे नहीं रहना है. उठ जाइए, कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई प्लेलिस्ट बना लीजिए जिसमें स्लीप स्टोरी, स्लीप म्यूजिक या योग निद्रा या मेडिटेशन टाइप की चीजें हो जिनको आप सिर्फ सुन सकें. टीवी मोबाइल वगैरह का उपयोग नहीं करना है, बल्कि सोने जाने से आधा घंटा पहले ही वो चीजें बंद कर दीजिए. एक्सरसाइज प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम में अगर स्लीप के इश्यूज हो रहे हैं तो. शाम को 5-6 बजे के बाद चाय नहीं पीनी है. सिगरेट अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं तो वो सब नहीं लेना है. अल्कोहल अवॉइड करनी है, कैफीन अवॉइड करना है. रात को गर्म दूध पी के सो सकते हैं या गर्म पानी से थोड़ा नहा के सो सकते हैं, उससे माइंड कूल डाउन होता है. एक तरीका जो मेरे लिए बहुत काम करता है, आप सोचेंगे कि ये क्या तरीका है, बट मुझे अगर नींद नहीं आए तो मैं हनुमान चालीसा करना शुरू कर देती हूँ. मेन पर्पज ये है कि आपका जो उस समय जब नींद नहीं आती, हम बहुत सारा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, और जितना
2: कुछ और नेगेटिव थॉट्स
0: या और कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हम कहते हैं जितना नींद के पीछे भागेंगे उतना नींद आपसे दूर भागेगी. तो आप चाहे कोई मंत्र पढ़ लीजिए या बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए, तो उन सब से क्या होता है, उन नेगेटिव थॉट से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो अगेन माइंड रिलैक्स होगा।

0: नींद आने लगे. सो ये कुछ तरीके हम बताते हैं स्लीप से.
1: हमारे साथ हमारे रेगुलर जो श्रोता हैं चट्टा जी, वो भी कॉल पे आ गए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं. हेलो.
2: हेलो, नमस्ते मैडम
1: जी. नमस्ते नमस्ते.
2: रघुविंदर सिंह चट्टा बोल रहा हूँ
1: जी. आप अपना प्रश्न करें.
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
0: नमस्ते जी.
2: डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं बड़ा कूल माइंडेड पर्सन हूँ
0: जी,
2: और 37 साल गवर्नमेंट जॉब की एज ए ऑफिसर, और रेगुलर लिस्टर भी हूँ आकाशवाणी का 45 ईयर से. लेकिन मेरे को एक दिक्कत ये होती है कि मैं कई बार छोटी सी बात पर एकदम से आग बबूला हो जाता हूँ. फिर मेरे से ना तो कोई काम होता है और ना मैं रात को सो पाता हूँ. बार बार नींद खुल जाती है, जैसे किसी मैं जा रहा हूँ और सामने से कोई जानकर आ रहा है, उसने मुझे इग्नोर कर दिया या मैंने मैसेज किया प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हुआ, तो मेरे को तो फिर मेरा माइंड जो है ना वो अपसेट हो जाता है. तो
1: मुझे क्या करना चाहिए? कोई मैसेज नहीं शामिल हुआ इस पे आप आग बबूला मत हुआ करिए. यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं.
2: नहीं, वो बात नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ.
1: हाँ, आपकी ही बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप हमारे सभी कार्यक्रमों में भी मैसेज करते हैं हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर में शामिल हो. तो हमने सुन लिया. डॉक्टर क्या बताना चाहेंगे इनको?
0: तो चड्ढा जी नमस्कार. तो इसको हम कहते हैं कि एकदम से आग बबूला, मतलब ऐसा लगना कि कहीं ना कहीं दिमाग में शायद ये सोच चलती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, या मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, या सामने वाले को तमीज से रहना चाहिए, या लोगों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, जो भी एक दिमाग में चल सकता है. तो जब हम ये बहुत ज्यादा इस चीज पे अटक जाते हैं ना कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, या सामने वाले को हमेशा चीजों को ठीक से करना चाहिए, तो वहां पर हमें फिर जल्दी गुस्सा आ जाता है. हमें लगता है कि हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है. उसके लिए जो एक सिंपल हम लोग टेक्निक कहते हैं, टाइम आउट. आप जब गुस्सा आ रहा है, एक तो उस परिस्थिति से बाहर आ जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करा. अगर फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम कहते हैं अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लीजिए, जैसे सारा गुस्सा उसमें भर दिया है, और उसको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी को छोड़िए. ऐसे करके 5 मिनट तक थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उस सिचुएशन से हटेंगे, और फिर सोचना है कि क्या मेरा गुस्सा जायज है, क्या सामने वाले ने अगर मुझे इग्नोर किया या मैसेज शामिल नहीं हुआ तो क्या उसका कोई और कारण भी हो सकता है. सो इस तरह से जब अपने आप को पॉजिटिवली समझाएंगे, या अपनी सोच को क्वेश्चन खुद करेंगे कि मैं ऐसा किस वजह से सोच रहा हूं, क्या मेरा सोचना सही है, क्या इसको देखने का और कोई तरीका है, या मैं किसी और किसी बच्चे को अगर वो इस परिस्थिति में होता तो उसको क्या समझाता कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा. बट सबसे जरूरी है आपको एकदम से जो गुस्सा आया है उसको शांत करना. उसके लिए बेस्ट होता है थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, मुंह पे ठंडे पानी से थोड़ा छींटा दे दीजिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आप ब्रीद करेंगे तो आपका इन जनरल बॉडी टेम्परेचर, माइंड सब काम डाउन होगा.
2: जी, थैंक यू मैडम. जय हिंद
1: जी. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए. और ये जो आपने प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं के मन में भी हो सकता है, तो उनको भी जवाब मिल गया. यहाँ पर एक फिर म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, गाना सुनेंगे और वापस आएंगे, और जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं उनको भी शामिल करेंगे. आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली हमारे साथ हैं. बात हो रही है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली की. तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए रेनबो के साथ और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य, इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत और इसको कैसे पहचाने और कितना इम्पोर्टेंट होता है मेंटली हेल्दी रहना। सुखपाल जी हमारे साथ कॉल पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी जी नमस्ते सुखपाल जी।
1: डॉक्टर साई बाबा नमस्ते
0: जी। आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे?
1: मैम मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साई बाबा से, मेरी उम्र 75 वर्ष है सर, तो ये 75 वर्ष के बाद जो है ये बुजुर्गों में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है?
2: चिड़चिड़ापन
0: की बात कर रहे हैं
1: जी।
2: तो सुखपाल जी नमस्कार। चिड़चिड़ापन बेसिकली इसलिए आ जाता है क्योंकि शायद उस इंसान को, बुजुर्ग को लगता है कि उसने जिंदगी में या तो बहुत कुछ करा लेकिन उसको उसका फल नहीं मिला, या जिंदगी में वो ठीक से अपने जो चाहता था वो नहीं कर पाया दूसरों की वजह से, या कई लोग जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं चाहे फाइनेंशियली या फिजिकली, उस चीज में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। या आपके पास रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ करने को नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे अपना दिन गुजारूं, उस केस में भी चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं चिड़चिड़ापन के। बस ये देखने की जरूरत है कि अगर चिड़चिड़ापन कंटिन्यू हो रहा है, वो चीज निकल नहीं रही है और उसकी वजह से बाकी दिक्कतें भी आने लगी हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगी है, फैमिली के साथ नहीं बन रही है, या इन उसकी वजह से नींद में भूख में भी चेंज आ गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है ताकि वो ढंग से डायग्नोज कर सकें कि और कुछ डिप्रेशन टाइप की बीमारी तो नहीं हो रही है और उसका इलाज कर सकें
0: जी। और मैसेजेस हमारे पास हैं। सोहन जी ने लिखा है देहरादून से कि मेरी मदर की उम्र 81 इयर्स है और अचानक पता नहीं क्या हुआ, बड़बड़ाने लगी, किसी को पहचान नहीं रही है, उनका बीपी भी उन्होंने बताया है 158/78 है और कुछ खा भी नहीं रही है, तो क्या हो सकता है, ये जानना चाहते हैं।
2: इस केस में यूजुअली इस एज में जब अचानक से कोई चीज हो तो एक बीमारी होती है जिसको डिलीरियम कहते हैं, जिसमें अचानक से इंसान चीजों को भूलने लगेगा, अपने जान आसपास पहलों को नहीं पहचानेगा, या फिर उसको नहीं पता कि अभी क्या समय हुआ है, कहाँ पे वो रह रहा है या कहाँ पे बैठा है, और बड़बड़ाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। कई बार ये चीजें स्ट्रोक में भी हो सकती हैं। तो बेटर रहेगा कि आप जहां भी रहते हैं आसपास किसी साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लें ताकि वो प्रॉपर ब्रेन स्कैन वगैरह करके देख सके कि कोई और दिक्कत तो नहीं है।
0: अच्छा, और ये हमें लिखकर भेजा है, लिखने वाले ने नाम तो नहीं लिखा है पर लिखा है, नमस्कार टू डियरेस्ट दोस्त शालिनी जी एंड डॉक्टर साहिबा, थैंक्स फॉर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड अदर स्कैन्स नीडेड बट दीज आर नॉट डन टाइमली विच कैन अफेक्ट मेंटली। तो बहुत जरूरी है क्योंकि टेस्ट भी होने चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ये हम हमेशा कह ही रहे हैं। तो इन्होंने ये लिखा है कि कभी कभी विटामिन डी या B12 या अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से भी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है, तो कितना रेगुलरली करना चाहिए, हाउ फ्रीक्वेंटली?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेंटल हेल्थ डायरेक्टली तो इनकी वजह से नहीं बिगड़ेगी, बट हाँ ये फिजिकल हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकते हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ में फर्क पड़ सकता है। सो बेटर रहता है कि कम से कम एक ईयरली अपना जांच करवा लीजिए, जिसमें बेसिक जो आपके ब्लड टेस्ट हैं या अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, ये एक बेसिक करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर उसके बीच में लगता है कि कोई दिक्कत होने लगी है तो आप थोड़ा सा उसको पहले भी करवा सकते हैं
0: जी। ललित भाटिया हमको लिख रहे हैं, 65 साल के हैं, अहमदाबाद से। नमस्कार डॉक्टर मैडम और एंकर, आज का विषय धन्यवाद का पात्र है और मैडम का बताने का तरीका, वर्णन करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ रेडियो सुनना ही हमारी हर तकलीफ का इलाज है, तो इतना ही लिखा है उन्होंने, कोई प्रश्न नहीं किया है जी, और आपकी तारीफ की है। और ये हमें लिखा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से कि बहुत से बुजुर्ग अकेले रहते हैं, ऐसा बहुत आमतौर पर आजकल देखा जा रहा है, और उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं होता है, वो अक्सर खोए खोए रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, माइंड फ्रेश नहीं रहता है। तो ऐसे बुजुर्ग किस तरह से अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखें, फ्रेश रखें, बिकॉज ये भी एक काफी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है,
2: बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है स्पेशली अर्बन सिटीज में जहां पे अकेलापन बहुत ज्यादा हो गया है लोगों में। तो उसमें हम कहते हैं कि अपने लेवल पे जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं वो है अपना रूटीन बनाना। कई बार क्या होता है जब बहुत अकेलापन है, कोई है नहीं, तो लगता है क्यों सुबह उठना है, क्यों नहाना धोना है, क्यों कुछ भी काम करना है, बट एक रूटीन अगर आप बना पाएंगे तो उससे आप फिजिकली मेंटली बेटर रहेंगे। दूसरा, आसपास अगर आपका कोई कम्युनिटी सेंटर है, कोई एनजीओ है जहां पे आप जा सकते हैं, या मंदिर अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मंदिर में चले गए या गुरुद्वारे में चले गए जहां पे लोगों की थोड़ी हेल्प करवा दी या कर दी, वो उसमें मदद मिल सकती है। कई एनजीओज होते हैं जो ओल्ड एज के लिए स्पेशली काम करते हैं, तो आप वहां पे जा सकते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ऑर्फनेजेस वगैरह में भी आप जाके वॉलंटियर कर सकते हैं, तो छोटे बच्चे होंगे उनके साथ जब घुलेंगे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे खेलेंगे, तो वहां पे भी माइंड फ्रेश हो सकता है,
0: अकेलापन दूर हो सकता है।
2: या अगर आपको लगता है कि आप कोई इस उम्र में कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई चीज जो आपने सोची थी कि मैं करूंगा लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाए, तो इस तरह का कोई नई चीज भी आप सीख सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बच्चों को चाहे फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया गरीब बच्चों को। सो जितना एक्टिव अपने आप को रख पाएंगे, अपने खुद को थोड़ा पुश जरूर करना पड़ेगा बट एक्टिव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे और चार लोग मिल जाएं आपको, उससे मदद मिल सकती है।
0: और ये हमें लिखकर भेजा है मोहम्मद इब्राहिम जी ने कि कई बार ये देखने में आता है कि कुछ एल्डरली जो होते हैं वो एज के साथ ओवर स्वीट हो जाते हैं या कुछ इरिटेबल हो जाते हैं, तो इसका कुछ खास कारण होता है, क्यों हो जाता है ऐसा?
2: देखिए, वो तो सबका एक तो अपना नेचर भी है कि इंसान इन जनरल कैसा है, फिर उसके सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं। एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर बुढ़ापे में आके आपको लगा कि आपने अपनी जिंदगी अभी तक अच्छे से जी ली है, जो चाहते थे वो काम कर लिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक से सेटल हो गए हैं, तो आप खुद में बड़ा कंटेंट फील करेंगे कि हाँ मैंने कर लिया, और आपको पता है कि फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं हुई हैं, आप जनरली परेशान रहे हैं लाइफ में, या फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, या आप फैमिली मेंबर्स किसी भी चीज में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। तो ये तो सबकी अपनी
0: सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और ये एक जो मैसेज है, इससे ही हम कार्यक्रम को यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला खत्म करेंगे। गोविंद बंसोड़े जी लिख रहे हैं लातूर महाराष्ट्र से, नमस्कार। और बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ये बात रेडियो डॉक्टर में डॉक्टर राहुल खरे साहब ने कही थी, और इसी बात को हम रोज सुबह व्यायाम करते समय दोहराते हैं जिससे हमारा हौसला और बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं रेडियो डॉक्टर इनकी जिंदगी में इनको मदद कर रहा है, रेडियो डॉक्टर के कारण हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और हम रेडियो डॉक्टर की प्रस्तुतकर्ता को और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, नमस्कार कहना चाहेंगे। तो हमारी तरफ से भी गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और साथ ही साथ आपने इतने अच्छे शब्द हमारे कार्यक्रम के बारे में कहे। और अब इस कार्यक्रम को खत्म करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं जरूर चाहूंगी कि कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात आप चाहें हमारे उन श्रोताओं के लिए भी जो देर से जुड़े, कहीं ना कहीं आपकी बातों को पूरा नहीं सुन पाए। तो जो आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, तो इसमें हम क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगी?
2: दो तीन चीजें कहूंगी शालिनी जी, कि एक तो हर बूढ़ा इंसान बीमार ही होगा वो जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी बूढ़े लोग हैं जो एक्चुअली बहुत हेल्दी हैं। अब उसके लिए जो जरूरी है वो है एक तो शुरू से अपना ख्याल रखना, जितना जल्दी आप शुरू कर पाएंगे उतना आपकी एजिंग बेटर होगी। तो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, अपने आप को मेंटली इंगेज रखना, बीमारियों से बचने की कोशिश करना, या अगर बीमारियां हो गई हैं तो उनका जल्दी इलाज करवा लेना। सो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जिस तरह से शारीरिक परेशानियां किसी को भी हो सकती हैं, उस तरह से मानसिक परेशानियां भी किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन अगर सही समय पे हम उनका इलाज करवा लें, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब के लिए दवाइयां भी उपलब्ध हैं बहुत अच्छी, और साथ में काउंसलिंग भी होती है, अगर हम समय से इलाज करा लें तो जो बचे हुए दिन हैं, जो बाकी जिंदगी है, वो बहुत अच्छे से निकल सकती है। और तीसरी चीज, एक बुजुर्ग का भी परिवार की तरफ एक ये जिम्मेदारी, जैसे एक श्रोता ने कहा था कि आप अच्छे से बात कीजिए, बहुत ज्यादा टोका टाकी मत कीजिए, तो उनका भी एक फर्ज है, और साथ ही साथ परिवार का भी एक फर्ज है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखें, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिश्ते ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, रिश्ते ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। और बिल्कुल, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, जैसा गोविंद जी ने लिखा, आप भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में, हमें बताना चाहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है उसमें, आप कुछ बदलाव चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें लिख सकते हैं health.airdelhi@gmail.com पर। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे चाहेंगे डॉक्टर स्वाति केटिया गुप्ता को कि आप यहां आई, इस विषय पर इतनी जानकारी आपने श्रोताओं को दी, उनकी समस्याओं का समाधान किया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, यहां आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: और स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का विरोध दर्ज कराने के लिए आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। कल एक और जहाज पर हमला किया गया जिस पर चालक दल के 22 सदस्य भारतीय थे। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पहले इन्हें लापता माना जा रहा था। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित की गई। इसने सीमा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और सीमा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और खेल मंत्री ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे चेतन। समय एक बहती नदी की तरह है, क्योंकि जिस तरह के सेतु के नीचे से गुजर पानी कभी वापस नहीं आता, उसी तरह बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। तो इसीलिए जिंदगी के हर पल को खुल के जिए। हम जिंदगी भी पानी की तरह जीना चाहिए। जिंदगी एक नदी है, चाहत इसकी जलधारा है, खुशी और गम के बीच बीच हो रहा गुजारा है। नदी में जल न हो तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जीवन में अगर प्रेम न हो तो मानव जीते जी मर जाता है। वह अपना रास्ता खुद बनाती है। पर्वतों पत्थरों के सीने को चीर कर हर किसी के दिल में अपना घर बनाओ, मन की तृष्णा को मारकर सबके वह प्यास बुझाती जो उसके तट पर जाता है। जात पात धर्म भूलकर उसमें सब नहाते धोते हैं। नदी में तब तक जीवन है जब तक उसमें रफ्तार है। मानव तब तक मानव है जब तक उसके हृदय में प्यार है। जो भी सामने आता है वो उसे बह ले जाती है। सबको लेकर साथ चलो, हमें यही समझाती है।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: जीवन, जिंदगी क्या है? कुछ निश्चित समय के लिए मिली जीवन जो पता नहीं कब खत्म हो जाए। ये कह सकते हैं कि जिंदगी पानी के एक बुलबुले के समान है जो कभी भी खत्म हो सकती है, तो क्यों ना इस अनमोल जीवन का एक एक पल जिया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कितने पल हैं, ये सोचकर चलना चाहिए कि एक पल में कितना जीवन है। जो पल बीत गया वो चले गया, फिर हाथ नहीं आने वाला है। अब जरा सोचे, जो पल बीत चुका है, जो हमने मजबूरी में काटे थे, उन्हें जिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें याद करके ही घबरा जाए? यदि ऐसा हो तो हम अपने जीवन को जीवन नहीं कह सकते हैं। कर दिया बर्बाद यू वरक किताबे जिंदगी, कुछ हमी ने फाड़ डाला, कुछ हवा में उड़ गए। इस तरह अपनी जिंदगी को बराबर न करें। यह अनमोल है, इसे जितना भी हो सके खुशियों से भर दे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो और मुस्कुराते हो, इसी को जीना कहते हैं। तभी जिंदगी सार्थक हो सकती है। अगर जिंदगी में खुशी है तभी आप सही मायने में जी रहे हो, और खुशी तो आप छोटे से छोटे बात भी ढूंढ सकते हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ऐसे कितना और कैसे प्राप्त करते हैं। याद रहे, दूसरों को खुशी देने से ही हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। प्रयास करें कि हम अपने परिवार वाले और अपने परिजनों या परिचित लोगों को, जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं, सभी को दिल से चाहे, किसी से भी नफरत न करें। इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है और उसके साथ ही हमारा मन भी दुखी होता है और दिल में दरिया बढ़ती है। जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिले, क्या पता फिर मिले या ना मिले। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इस आखिरी मुलाकात की याद कैसी हो, कड़वाहट भरी या प्यार भरी, ये सब हम स्वयं ही सोच सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी सिर्फ एक बार के लिए मिले हैं। इस संसार से जाने के बाद कोई किसी से दोबारा मिलने वाला नहीं। बिछड़ जाएंगे सदा सदा के लिए, कभी दोबारा न मिलने के लिए। फिर चाहे हम लाख कोशिश कर ले, एक पल के लिए भी उन्हें नहीं मिल सकता। रह जाती है तो सिर्फ यादें और पछतावा सदा सदा के लिए। वो मेरे बाद रोने हैं, कोई उनसे पूछे कि पहले किस लिए नाराज थे, अब मेहरबान क्यों हैं। भाव यही है कि पहले तो हम किसी इंसान में कोई अच्छाई नजर नहीं आती थी, और उसके मर जाने के बाद कोई कमी नजर नहीं आती। उसके दोष भी गुणों में तब्दील हो जाती है और वह कम महसूस होती है, जो फिर कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो क्यों ना हम समय रहते ही संभल जाए और अपने जीवन का पूरा आनंद ले। इसे दुखों की भट्टी में न झोंके। ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता था।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: काम के बोझ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। परिणाम स्वरूप वह तनाव में रहने लगा। घर वाले से भी प्यार के साथ बात न कर पाता। घर में झगड़ने लगा और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वह घर से अपने कार्यालय के लिए जा रहा था तो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और उसने वही दम तोड़ दिया। उसका शव उसके घर पहुंच गया। घर वाले पर तो जैसे अचानक पहाड़ टूट पड़ा। उसका अचानक बिछड़ जाना सहन नहीं कर पा रहा था। उधर उस व्यक्ति की आत्मा यह सब देख रही थी। उससे उनका रोना सहना नहीं हो रहा था। वो उन्हें छूने की कोशिश करता पर छू नहीं सकता। वो सोचता कि जब उसके पास सारा परिवार था तो उसके पास समय नहीं था और उसे उनकी अहमियत नहीं पता थी। अब वह इन सब को बताना चाहता है कि उनसे कितना प्यार करता था, परंतु बता नहीं सकता। वह सोचता है कि अगर मुझे एक पल भी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है। परंतु अफसोस, अब क्या हो सकता है, ये सोचकर उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख होता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी जुदाई सहन नहीं कर पा रहे हैं। वह उसे बहुत प्यार करते थे परंतु वह कभी जाहिर नहीं कर पाए। अब उनके मन में यही अफसोस था कि काश हमने इन्हें खुश रखा होता। जो समय इनके साथ गुजरा वो खुशी से गुजरा होता। अब पत्नी व बच्चे यूं ही सोच रहे थे कि काश हमें कुछ लम्हे और मिल जाए, क्योंकि वो दुनिया में इतने उलझे हुए थे कि कभी एक दूसरे के मन में झांकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब चाहने से क्या हो सकता है। अब उन्हें जिंदगी के एक एक पल की कीमत पता चल चुकी थी। इतने में उस व्यक्ति की आंख खुल गई और वह अपने चारों ओर देखता है। वह अपने घर में है, उसका परिवार उसके पास है। उसकी जान में जान आई। उसने अपने परिवार जनों को बहुत प्यार किया और पूरा जीवन प्यार से रहने का वादा किया, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत पता चल गई। क्योंकि जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं ये अमूल्य है। इस दुनिया के जंजाल में इतना मत फंस जाओ कि जीना ही भूल जाए और केवल जीने की रस्म ही अदा करते रहे। तो दोस्तों, विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन,

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जैन सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। अभी आपने हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुना एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अल्फा जैन एंड एनी गेसेस। वैसे इतना तो आपको पता ही होगा है ना कि आज क्या है। आज है फ्राइडे और मुझे यकीन है कि इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और यंग प्रोफेशनल्स के दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा होगा, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन ऐसा क्या है फ्राइडे में जो भाई मंडे में नहीं है? सारे वीकडेज से थोड़ी सी नाराजगी है क्या? क्या फ्राइडे सिर्फ वीकेंड का गेटअवे माना जाता है या फिर ये एक फीलिंग है असाइनमेंट्स के प्रेशर्स के बाद रिलीफ वाली फीलिंग हो सकती है या क्लासेस के बाद फ्रीडम वाली फीलिंग हो सकती है और पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद एक छोटी सी विक्ट्री की फीलिंग? जी हाँ, आज अल्फा जैन में हम बात करेंगे किसकी? TGIF मूड की। अब TGIF तो पता है ना, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

अब ये मत कहना कि ये सब सुनकर, इतना अच्छा म्यूजिक सुनकर आपकी बॉडी में ऐसी झंझनाहट सी नहीं हुई, आपको फ्राइडे की फीलिंग नहीं आई, बस अब ये मत कहना। वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जिसका इंतजार स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स पूरा हफ्ता करते हैं, वो है फ्राइडे। सच बताइएगा, फ्राइडे में ऐसा क्या खास है भाई? कॉलेज वही होता है, क्लासेस वही होती हैं, टीचर्स भी वही होते हैं, ऑफिस जाने वालों के लिए डेस्क भी वही होता है और काम भी वही होता है, लेकिन फिर भी फ्राइडे की फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। शायद इसीलिए क्योंकि फ्राइडे हमें एक छोटी सी होप देता है, ये याद दिलाता है कि पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद अब थोड़ा सा ब्रेक मिलने का टाइम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार वीकेंड से ज्यादा एक्साइटमेंट फ्राइडे को होती है, क्योंकि एंटिसिपेशन भी तो हैप्पीनेस है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हमें पता होता है कि कल अलार्म लगाना ही नहीं है, या थोड़ा लेट उठ सकते हैं, या दोस्तों के साथ प्लान बना सकते हैं, तो मूड ना ऑटोमेटिकली बेटर सा हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्राइडे सिर्फ एक दिन थोड़ी है, ये तो इमोशन है।

वंस अगेन आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और मैं हूं ज्योतिका। एंड आज का क्या मूड है भाई? आज का मूड है TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। स्टूडेंट लाइफ और वीकेंड्स का तो अलग ही रिश्ता होता है। मंडे से थर्सडे तक असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल फाइल्स, अटेंडेंस और एग्जाम्स का प्रेशर, और फिर फ्राइडे आता है एक रिवॉर्ड की तरह। फ्राइडे के दिन कितने स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस वीकेंड पूरा सिलेबस यूं ही कवर हो जाएगा। कोई कोडिंग सीखेगा, कोई जिम ज्वाइन करेगा, तो कोई अपनी लॉन्ग पेंडिंग लिस्ट ऑफ बुक्स खत्म करेगा, और फिर वीकेंड खत्म होने तक सिर्फ आधा प्लान ही तो पूरा होता है। लेकिन शायद यही स्टूडेंट लाइफ की खूबसूरती भी है। कभी लास्ट मिनट के प्लान्स, कभी अनएक्सपेक्टेड आउटिंग्स, और कभी पूरा दिन घर पर रहकर अपनी फेवरेट सीरीज देखना। वीकेंड का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है और वही उसे स्पेशल भी बनाता है। तो अब वीकेंड तो आ गया है, आपके क्या प्लान्स हैं? सोच लीजिए, और पूरे ना भी हो तो टेंशन मत लेना आप।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है।

0: आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जैम। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, फ्राइडे शाम को आप फुल मोटिवेशन में होते हैं, एक डिटेल्ड प्लान तैयार होता है सैटरडे मॉर्निंग जिम का, सैटरडे इवनिंग फ्रेंड्स के साथ, और संडे स्टडीज, संडे नाइट प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट वीक, सब कुछ परफेक्टली प्लान। लेकिन फिर सैटरडे मॉर्निंग आती है, अलार्म बंद होता है और आंख खुलती है सीधा 11 बजे, और उसके बाद पूरा शेड्यूल धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। और फिर संडे रात को एक क्लासिक डायलॉग, यार वीकेंड इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। अगर आप भी इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं है। वीकेंड प्लान्स और रियलिटी के बीच का जो गैप है ना, शायद हर जनरेशन का फेवरेट स्ट्रगल है ये।

देखो, आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम अक्सर बिजी रहने को ही सक्सेस समझने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि ब्रेक लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेहनत करना, है ना? पूरे हफ्ते पढ़ाई, इंटर्नशिप्स, क्लासेस, ट्यूशंस, प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच कभी कभी खुद के लिए भी वक्त निकालना भी जरूरी होता है। एक अच्छी वॉक, फेवरेट म्यूजिक, फैमिली के साथ डिनर या बस एक कप चाय के साथ शांति के कुछ पल, ये छोटी छोटी चीजें हमें मेंटली रिचार्ज करती हैं। और जब हम रिचार्ज होते हैं तभी नए वीक का सामना और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो अगर इस वीकेंड आप थोड़ा रेस्ट करते हैं तो गिल्टी फील मत कीजिएगा, आप अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहे हैं।

दोस्तों, TGIF का मतलब सिर्फ वीकेंड नहीं होता, है ना? ये उन छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने का भी दिन होता है जो हम पूरे हफ्ते अचीव करते हैं। हो सकता है, देखो, आपका असाइनमेंट टाइम पर सबमिट हो गया हो, या हो सकता है आपने एक डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली हो, या हो सकता है कि आपने बस एक चैलेंजिंग वीक को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया हो। बिलीव मी, ये सब अचीवमेंट सेलिब्रेट करने लायक है। हम अक्सर बड़ी अचीवमेंट्स का ही वेट करते रह जाते हैं, लेकिन लाइफ की खुशी कई बार इन्हीं छोटी छोटी जीतों में छुपी होती है, छोटी छोटी विंस में छुपी होती है। तो आज फ्राइडे है, अपनी किसी एक अचीवमेंट के लिए खुद को क्रेडिट जरूर दीजिएगा।

वेलकम बैक टू अल्फा जन। आज एक फन क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आपकी फ्राइडे की पर्सनालिटी क्या है? क्या आप वो इंसान हैं जो फ्राइडे शाम होते ही फ्रेंड्स को कॉल करके प्लान्स बना लेते हैं, या फिर आप वो हैं जो पूरे वीकेंड के लिए ट्रैवल रील्स सेव करते रहते हैं और सोचते हैं कि आज यहाँ जाऊं कुछ चटर पटर खाने, कि आज वहां जाएं कुछ अच्छी फोटोज लेने।

या फिर आपकी परफेक्ट फ्राइडे नाइट का मतलब है कंफर्टेबल क्लोथ्स, फेवरेट स्नैक्स और आपका अपना बेड और आपकी अपनी फेवरेट सीरीज। सच कहूं तो कोई भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान रिचार्ज अपने अपने तरीके से अलग तरीके से होता है। कुछ लोग एनर्जी लोगों के साथ, मतलब एनर्जेटिक लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन और कुछ लोग अकेले वक्त बिताकर इम्पॉर्टेंट तरीकों से डिसीजंस लेते हैं, उनको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वीकेंड आपको खुश करे। तो आज जरूर सोचिएगा कि आपका फ्राइडे वाला वाइब क्या है भाई।

और दोस्तों, आज का अल्फा जन यहीं समाप्त होता है। फ्राइडे हमें हर हफ्ते एक छोटी सी होप देता है, एक रिमाइंडर देता है कि चाहे वीक कितना भी बिजी हो, स्ट्रेसफुल हो या चैलेंजिंग क्यों ना रहा हो, ब्रेक लेना जरूरी है, खुद को अप्रिशिएट करना जरूरी है और लाइफ को ना सिर्फ डेडलाइंस के थ्रू नहीं, मोमेंट

के थ्रू भी जीना जरूरी है। तो इस वीकेंड थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ नया भी सीख सकते हैं आप, या फिर एक काम कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, कभी कभी वो भी बड़ा जरूरी होता है। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे अल्फा जैन सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड रिमेंबर, मंडे जरूर आएगा, लेकिन अभी के लिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में यह बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चयन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: আওয়ার ভয়েস গেটস ইউ হার্ড এভরিওয়্যার।
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ করবলৈ আর সরকারি আসনির বিষয়ে অবগত করাবলৈ আমার ফোন নম্বরটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী সর্বক্ষণ সর্বত্র আপনার হৈতে।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत एआई मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की एआई यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. This is the second time the U.S. envoy has been summoned by the ministry. 3 Indian seafarers who were initially reported missing have been confirmed dead in one of the attacks. India's retail inflation accelerated to 3.93% in May this year on an annual basis, rising for the 5th consecutive month under the new series. The inflation print was moderately higher from 3.48% recorded in April. According to data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.25%, while in urban regions it rose to 3.53%. The food inflation rate, based on the All India Consumer Food Price Index, stood at 4.78% last month, up from 4.2% in the preceding month. India AI Mission today launched Varya, a distilled video model built to make frontier video AI affordable, accessible and relevant. Addressing the launch event in New Delhi, Secretary in the Ministry of Electronics and Information Technology, S. Krishnan said the launch of one of the foundational models supported under the India AI Mission marks a significant milestone in India's AI journey. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarter-final clash today. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The Sensex surged 1,695 points to close at 75,528, while the Nifty jumped 461 points to settle at 23,623. And that is the end of this news bulletin.
2: প্ৰিয় শ্ৰোতা, বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈ আছে মিডিয়াম এফৰ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগ পঢ়াবলৈ লৈছো শ্ৰুতিস্মা অনপল দত্তৰ কথিকা, খগেন মহন্তৰ কণ্ঠৰ গীত সুৰ আৰু জীৱন দৰ্পণ।

0: आक्रमणस्य विरोधः प्रकटितः। ह्यः 20 भारतीय कर्मचारिभिः सह एकस्याम् अन्यस्याम् नौकायाम् आक्रमणम् अभवत्। अमेरिकी राजदूतः नवदिल्ल्यां विदेश मंत्रालयस्य अपर सचिवेन आहूतः। अयं द्वितीयः अवसरः अस्ति यदा अमेरिका देशस्य राजदूतः मंत्रालयेन आहूतः। प्रारंभे लुप्ताः इति सूचिताः त्रयः भारतीय नाविकाः एकस्मिन् आक्रमणे मृताः इति पुष्टीकृतमस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य द्विदिवसीय यात्रायां देहरादून नगरं सम्प्राप्तवती। उत्तराखण्डस्य राज्यपालेन सेवानिवृत्तेन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इत्यनेन मुख्यमन्त्रिणा पुष्कर सिंह धामिना सह तस्याः स्वागतं विहितम्। निर्धारित कार्यक्रमानुसारं राष्ट्रपतिः अद्य देहरादून नगरस्य राष्ट्रपति निकेतनं गत्वा 32100 एकड़ परिमितेषु क्षेत्रेषु विकसितस्य राष्ट्रपति उद्यानस्य सांप्रतिक निर्माण विकासयोः कार्याणाम् अवलोकनं करिष्यति। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अवदत् यत् श्वः यावत् वायव्य भारते आर्द्र ऋतुः अनुवर्तते, यत्र प्रजंड वातेन शिलावृष्ट्या च सह मेघावृष्टेः संभावना विद्यते। ऋतुविज्ञान विभागानुसारं अग्रिमद्वयोः त्रिषु वा दिवसेषु कर्णाटक तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखंड उत्तरप्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनीया परिस्थितिः अनुकूला अस्तीति अनुमितमस्ति। अन्ते शोकास्पदम् एका वार्ता। प्रसिद्धः भारतीयः लक्ष्यभेदन स्पर्धा प्रशिक्षकः क्रीडकश्च पूर्व एशियन गेम्स स्वर्णपदक विजेता जसपाल राणा दिवंगतः। सः 49 वर्षीयः आसीत्। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघस्य अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देवस्य अनुसारं श्री राणा गतरात्रौ दिल्ल्याः चिकित्सालये अन्तिमं श्वासम् अगृह्णात्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यादयः नेतारः जसपाल राणा वर्यस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः। अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरोंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कनाडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गत 12 वर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितम्। गृहमंत्री अमित शाहः नवदेहली नगरे श्री अमरनाथ यात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थं उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीय प्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबंधितम्। संयुक्तराष्ट्रसंघः ओमान देशस्य तटे तैल नौकास्थानां भारतीय नाविकानाम् उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्यभेदन स्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 49 वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरोंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां केनडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানটি। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় যোগাভ্যাস আৰু সুস্বাস্থ্য। অনুষ্ঠানটিত অতিথিৰূপে উপস্থিত আছে যোগ বিশেষজ্ঞ জয়ন্তী চক্ৰৱৰ্তী। অনুষ্ঠানটিৰ আগ ধৰিছে স্নেহা পাঠকে। এয়া অনুষ্ঠানটিৰ দ্বিতীয়টি খণ্ড।
2: নমস্কাৰ আকাশবাণীৰ সমূহ শ্ৰোতাকে, শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানলৈ মই স্নেহা পাঠকে আদৰণি জনাইছো। আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু যোগাভ্যাস আৰু সুস্বাস্থ্য, আৰু এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আমি সমল ব্যক্তি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো যোগ বিশেষজ্ঞ জয়ন্তী চক্ৰৱৰ্তীক। বাইদেউ, যোৱাটো খণ্ডত আমি যোগ মানেনো কি আৰু যোগাভ্যাস আমি কিয় কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে কথা পাতিছিলো। আজিৰ খণ্ডত প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিছো যে প্ৰত্যেক বছৰে যোগ দিৱসৰ একোটা বিষয় বাছি লোৱা হয়, এই বছৰৰ বিষয়টোনো কি আৰু এই বিষয়টোৰ তাৎপৰ্য এই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিছো।
3: এই বছৰৰ যিটো আমাৰ থিম দিয়া গৈছে য়োগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডেৰ কাৰণে, সেইটো হ'লগৈ ওৱান আৰ্থ ওৱান হেল্থ।

0: होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the US Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The US envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route, with a coordinated effort.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यही से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से

0: लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि ये 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाते हैं तो इस कन्वेंशन के बाद के इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है तो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ

के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो। जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एम्यूनिटीज को बढ़ाने का काम हो। निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है, लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिला ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा,

0: वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है, और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे,

0: जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटाडेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूर्य पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा,

0: अंतिम शब्द, वो मतंजनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोलू में बैल में जुते हुए बीजो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिये, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात

0: हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हो, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसे संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं, उसके लिए मैं

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
4: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडिव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कैश किंग के टेली लोन न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के

0: लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है।

0: चालू भी कर दिया है। हम लोग समय पर तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइट्स गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू फर्दर विमेन लेड डेवलपमेंट अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in